0: बनूंगा देश का ऊंचा नाम करूंगा।
1: शाबाश, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोग।

0: नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा।
1: शाबाश, मीठी मीठी बातों से बचना जरा।
2: गाना खत्म हो गया था या तुमने बंद कर दिया?
3: नहीं, पूरा गाना बजा है, गाना खत्म हो गया है।
2: मेरे को लगता है जैसे सडनली किसी ने प्लग खींच दिया और गाना बंद हो गया। एनी
3: हाउ, हमारे सुनने वाले भी एंजॉय कर रहे हैं। वी हैव कमेंट्स फ्रॉम नीलम एंड आशा जी एंड श्रेष्ठा, दे लाइक द सॉन्ग्स, सो दैट्स गुड।
2: ओके, तो सुनने वालों,
3: टॉकिंग अबाउट द वर्ड दीदी,
2: दीदी, दीदी को हिंदी, बंगाली, पंजाबी और नेपाली में दीदी बोलते हैं, तमिल में अक्का, तेलुगु में अक्का, मलयालम में चीची, कन्नड़ा में अक्का, मराठी में ताई, गुजराती में बेन, उड़िया में अप्पा एंड उर्दू में बाजी और अप्पा, और असमीज में एडियो। एनीहो, दैट्स लंटी, आई डोंट थिंक आई कैन रिमेम्बर ऑल दैट।
3: All right, next song, listeners, is also a song selected by my sister Rashmi. Just want to give a shout out to Preeti, Ria and Ritik if they are listening from Ohio.
2: Columbus, Ohio.
3: So this is one of her favorite songs too. This is from the movie Sahib, Bibi or Gulam. And I remember, we all remember growing up, we had the LP, the big record of this movie, and this was also one of our father's favorite movie, because he used to like Meena Kumari. So that was the movie Sahib, Bibi or Gulam. But the song which my sister Rashmi chose is Asha Bhosle song Bhavara Bada Nadan. So listeners, I hope you like this song too.

0: जा
1: बोलना। जी हाँ, भंवरा या भोरा या ब्लैक बम्बल बी, इसको जो है जब बहुत तेज़ उड़ता है एक फूल से दूसरे फूल में जाता है तो एक बड़ी लाउड आवाज़ भी करता है, और इसका साहित्य और कवि में कवियों ने खूब यूज़ किया है। मालूम है मनीषा, कवियों में इसमें अपनी कविताओं में यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी कविताएं और गाने में इसे प्रेम और फूलों के रस का प्रतीक माना गया है। इसे सिंबल जो भंवरा एक फूल से दूसरे फूल पे जाके बैठता है, इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग यू नो फ्लावर्स सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर पीपल विद साइंटिफिक माइंड। एनी हाउ, बहुत अच्छा गाना था। अभी नेक्स्ट क्या बजा रही हो आरजे?
2: तो अगले दो गाने, बोथ दीज सॉन्ग्स आर सांग बाय टू सिस्टर्स, एंड द टू फेमस सिस्टर्स विच वी नो ऑफ आर लता मंगेशकर एंड आशा भोसले। So there are not many songs which are sung by both of them together, because as we know, I mean, there was some sibling rivalry between both of them, which is so very common. So, but they had some songs which they sang together, which were popular. And one of the song, which I think you sought out this song, you look, this is from the movie Professor, and this is it's a nice catchy song and a nice upbeat song, which is picturized on two sisters. I believe one of them is Sarah Banu, or
1: I have to look it up.
2: I don't know who the two actresses are, but this is a really nice catchy song sung by Asha Bhosle and Lata Mangeshkar. So, oh dear, let's all enjoy.
1: Thank you for giving me credit on air.

0: ऑलराइट, तो ये था आई थिंक 1960s की मूवी प्रोफेसर विद शमी कपूर का गाना. आई एम नॉट श्योर हु द एक्ट्रेस वॉज, बट आई थिंक इट वॉज सायरा बानो.
1: राइट, लीड एक्ट्रेस वॉज सायरा आई थिंक, बट इट वॉज पिक्चराइज ऑन कल्पना एंड परवीन चौधरी. और इसकी शूटिंग जो थी मूवी की दार्जिलिंग में हुई थी. और बहुत अच्छा गाना है. आई एम ग्लैड अश्विनी जी का कमेंट बहुत पसंद आया कि मनीषा के गांव, मनीषा की
0: किसी गांव में,
1: किसी गांव में मनीषा की सिस्टर्स मिलने आई हुई हैं. शाउट आउट टू अश्विनी जी, थैंक यू फॉर वेरी लवली कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंट. एनी हो, मनीषा आरजे तुम इतने साल से कर रही हो, लता और आशा ने सैकड़ों, ना सैकड़ों तो गलत होगा बोलना, हजारों गाने गाए.
0: अच्छा, चलो अगला गाना भी उनका है, दोनों बहनों का, आशा एंड लता, आशा ताई एंड लता दीदी as they are called, sung this song from the movie Utsav, and it's a beautiful song, so I like to play that.
1: You cut me off.
0: No, you say what you want to say.
1: After the song.
0: So let me, to agla gana hai, Man Kyun Behka.

0: जी हाँ, वो मन ही क्या जो बहके ना, मेरा मन तो कई बार बहकता है, कभी ललचा जाता है कुछ खाने के लिए, फ्राइड फूड खाने के लिए। और लता और आशा की इस आवाज को जो स्क्रीन पे उन्होंने अपनी आवाज दी थी रेखा के लिए और अनुराधा पटेल के लिए, 1984 की मूवी थोड़ी सी बदनाम थी अपने डायलॉग्स, थोड़े सीन्स के लिए। और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे शशि कपूर और डायरेक्टर गिरीश कर्नाड।
1: Alright, listeners, we are midway through our show. It's 12 noon and you're listening to the Geetmala show coming to you from WVKR, Independent Radio Station, from Vassar College, Poughkeepsie, New York at 91.3 FM or WVKR.org, and it's the Geetmala show coming to you. Right now, phone number here is 845-437-7178. Please call in for your requests and comments. And I am getting a few, so I'm glad you guys are enjoying the show. Start off this hour by a dedication. This is a dedication from Ravinder Vig to her husband, to Dr. Inderjeet Vig on his birthday. Happy birthday, Inderjeet ji.
0: Many, many happy returns of the birthday and happy birthday on your 57th birthday.

0: जी हाँ, कुड़ियों का है जमाना।
1: हाय रब्बा मुझे बचाना, औरतों का है जमाना, बहुत सताती हैं कई बार ये। मनीषा कभी नहीं सताती, जस्ट फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर एंड विद एनडीए। एनी हाउ इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी क्लिशे, यू नो, मतलब एक जमाने में समाज में जब बच्चे ज्यादा होते

0: थे, बहनें होती थी, भाई होते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे. विद टाइम यू नो एवरीवन हैज लेस एंड लेस किड्स, थिंग्स आर डिफरेंट. सो
1: द नेक्स्ट सॉन्ग, आई एम ग्लैड वी आर गेटिंग सम न्यू लिसनर्स. सो आई लाइक टू वेलकम विनीता अग्रवाल. विनीता जी हैज कॉल्ड फ्रॉम मिशिगन.
0: शाउट आउट टू विनीता.
1: शाउट आउट टू विनीता. विनीता इज द सिस्टर ऑफ अनीता मेहता, आवर वेरी ओन अनीता मेहता. एंड this is a song which Vinita would like to dedicate to her sister Anita, and remembering the childhood days, the fun times they had with each other in India. And can you imagine what has just happened? Anita just texted me with the same song dedicated for her sister.
0: Wow, that's awesome. That's what a
1: true love between sisters.
0: Right, a strong bond.
1: So this goes out to Anita Mehta and Vinita Agarwal. This is a song from the movie Laga Chunri Mein Daag. The song is Hum To Aise Hain Bhaiya. And wishing both the sisters, Vinita and Anita, a very happy what do I say?
0: Very happy sister relationship forever, and be happy, be well, and take care of each other. You know, एक जमाने की मैं बात और भी बोलना चाहता हूँ. जब siblings होते थे तो उसमें जो बच्चों के ना नाम rhyme करते हुए बनाते थे, जैसे
1: Anita और Vinita.
0: So anyhow,
1: so thank you Vinita for calling in, and Anita, this is Vinita called first, so this is a dedication from Vinita to you. And Anita texted me the same song dedicated to you. So that's really true love, I think.

0: जी हाँ, इस गाने को सुन के लगता है मेरे को तो बचपन में जो थे पतंग उड़ाने की याद आ गई. यू नो, अगस्त 15 में या राखी के पास छुट्टी होती थी, लोग छत पे चढ़ के या किसी पार्क में जाके पतंग उड़ाते थे. तो लवली चॉइस
1: श्रेष्ठा फॉर दैट सॉन्ग. लगता है आपने भी काफी पतंगे उड़ाई हैं बचपन में
0: तिलक नगर और जलंधर में.
1: सो द नेक्स्ट सॉन्ग इज अगेन अ लिटिल बिट अबाउट फैमिली और सिस्टर्स. दिस इज फ्रॉम अनदर, आई मीन राजेश्री पिक्चर्स, दे ऑलवेज हैड फैमिली थीम्ड मूवीज. सो दिस इज from a movie Vivah, and again I think it's sung by Shreya Ghoshal and Pamela Jain. OGG, it's, I think it's again sisters are singing it or singing for each other. I haven't heard this song, but I think it's great, so let's enjoy it.
0: You haven't heard it, but you think it's great?
1: Yeah, I think it's good.
0: It should be good. I think OGG, let's hear it. Yeah.

0: जी हाँ, नेटवर्क के अंदर आजा, बोलो हेलो हेलो।
1: व्हाट्सएप,
0: व्हाट्सएप
1: के बारे में भी था इस गाने में।
0: अच्छा,
1: बिकॉज एवरीबडी इज ऑन व्हाट्सएप नाउ।
0: राइट राइट। आई थिंक लोग, मेरे को बहुत डर लगता है कई बार, दुनिया की बहुत चिंता हो जाती है, लोग आपस में बात करना भूल जाएंगे, फोन पे बात करना भूल जाएंगे, सिर्फ मैसेज कर दिया काफी है।
1: सिर्फ व्हाट्सएप चैट कर दिया। तो अगला गाना है अनुराधा जी की फरमाइश, अनुराधा चंदर की फरमाइश, दीदी के बारे में, सुन सुन सुन दीदी। तो थैंक यू अनुराधा जी फॉर लिसनिंग एंड सर्च्ड योर सॉन्ग एंड गॉट इट, सो लेट्स एंजॉय।